न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे।

0: दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार खेलो और जीतो प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में। खेल को जीतने के लिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ पहला सवाल, जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, गोल भेजने की सबसे सही जगह कौन सी है?
1: मैं फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल कर सकती हूँ?
0: जी बिल्कुल।
2: शबनम, इसका जवाब गोल्ड बैंक है।
1: हाँ, मुझे राहुल का जवाब ठीक लगता है, गोल्ड बैंक।
0: बिल्कुल सही जवाब। अब आखिरी सवाल, गोल्ड खरीदने और बेचने दोनों के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है?
1: सर मुझे जवाब ठीक से पता नहीं है, मैं ऑडियंस से पूछ सकती हूँ?
0: बिल्कुल आप ऑडियंस पूछ ले सकती है।
3: गोल्ड बैंक।
1: मैं ऑडियंस के साथ हूँ, गोल्ड बैंक।
0: यहाँ देखिए 99.9% लोगों ने कहा है गोल्ड बैंक है सबसे सही जगह। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं।
4: विजिट द गोल्ड बैंक 215 द ब्रॉडवे साउथ ओर 0203 500 1111 goldbank.co.uk।
5: Honey, I was in the pet aisle and you'll never guess what.
6: What is that?
5: A gerbil. They were on sale.
6: Why would we want that?
5: They were doing 3 for 2.
7: Get the things you actually want for less. New lower prices are here to stay across storage, sofas, mattresses, and more. Available online and at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
8: In England, we're using water faster than nature can replace. If nothing changes, by 2055, we could face a daily water shortfall of more than 5 billion litres. And in Wales, wetter winters and drier summers are putting pressure on the water supply. Most of us think we use around 30 litres a day, but the reality is closer to 140 litres. We can all help to save water by making simple changes. Take shorter showers. Fix leaking taps or toilets using a washing up bowl instead of running tap, and switch to eco mode on your dishwasher or washing machine. Water is precious. To protect it, we all need to use less. Search Let's Save Water or visit letssavewater.com for easy ways to save water every day.
9: The first time you saw a red squirrel, the beautiful colours of autumn, and blackberry stained fingers. A wrong step in a stream, muddy trousers, and having to take them off before you get in the car. Thanks to the support of our members, the Woodland Trust protects the woods where these stories begin. Help save moments like these by joining the Woodland Trust today from just £4 a month. Visit woodlandtrust.org.uk/join.
10: This will be my very last season of Coffee with Karan. So join me and have that one last cup of coffee with me.
11: Join Karan Johar and his esteemed guests for the final season of Coffee with Karan, streaming now exclusively on Jio Hotstar. Download and subscribe now.
4: The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Ultra Vitamin D, the sunshine vitamin from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com. This is Sunrise, the UK's biggest.

0: Omar, you're so right. What a beautiful song. साजिश में शामिल सारा जहां है, हर जर्रे जर्रे की ये इल्तजा है. ओरे पिया, राहत फतेह अली खान, आज नचले on Sunrise.
1: Listener's Choice brought to you by Star Plus.
2: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, Stone Age से लेकर New Age तक तरक्की हुई है. What a player!
3: Watch India's top 1% every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
4: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.
0: Chand Mera Dil. That song again, the Neeti Mohan version. Gale se tenu aaj lagavan de, sajan menu ishq nibhavan de. जहां भी आप सुन रहे हैं, आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच. दे रियली मेक मी स्माइल, दे मेक मी थिंक, दे मेक मी पॉन्डर, दे मेक मी स्टॉप एंड कंसिडर व्हाट आई एम अबाउट टू से. समटाइम्स आई डोंट.

Van. Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Ticketmaster and AXS in association with Berico Food Distribution Limited and PRC Direct. Don't miss your chance to witness the voice that is Jubin Nautiyal. Radio partner Sunrise Radio.
1: दोस्तों आप सभी का स्वागत है खेलो और जीतो के मेगा एपिसोड में। बम्पर प्राइज जीतने के लिए अब मैं पूछने वाला हूँ आपसे द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो क्या आप सवाल के लिए तैयार हैं?
2: जी पाजी।
1: ये रहा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
2: सर जी प्लीज, मैं फोन ऑफ फ्रेंड यूज करूँगा और अपने डैड को कॉल करना चाहूँगा।
1: कंप्यूटर जी, इनके डैड को फोन लगाया जाए।
3: हेलो
2: पापा जी, मैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पे आ गया हूँ और सवाल ये है कि गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
3: ओ हाय रब्बा, ओ उल्लू के पट्ठे, तेनू एना भी नहीं पता, सारी दुनिया नू पता है यार, गोल्ड बैंक।
2: सर जी आंसर गोल्ड बैंक लॉक किया जाए।
1: और ये बिल्कुल सही जवाब, गोल्ड बैंक इज द राइट आंसर। सबको पता है गोल्ड खरीदने और बेचने की सबसे सही जगह है गोल्ड बैंक। हाय
4: Visit the Gold Bank, 215 The Broadway, Southall, 0203-500-1111, goldbank.co.uk.
5: Honey, I was in the pet aisle, and you'll never guess what...
6: What is that?
5: A gerbil. They were on sale.
6: Why would we want that?
5: They were doing 3 for 2.
7: Get the things you actually want, for less. New lower prices are here to stay across storage, sofas, mattresses, and more. Available online and at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
8: Which business insurance provider is trusted by nearly 1 million customers? Take it away, Gina. Simply Business. From builders to bakers to beauticians, if you need business insurance, join nearly 1 million customers who trust Simply Business. So search Simply Business today. Simply Business. That's enough, Gina. Oh, Simply Business.
9: T's and C's and acceptance criteria apply. UK only.
10: Kavita on Sunrise with Sony TV. What if your favorite contestants got one more chance to win? This season they do. It's Indian Idol. Legends return with Himesh Reshammiya. Starts 17th October only on Sony TV.
11: This is Sunrise, the UK's biggest.
12: What chumka? What chumka? What chumka?
11: Asia. Mix.

0: दोस्तों आप सभी का स्वागत है खेलो और जीतो के मेगा एपिसोड में। बंपर प्राइज जीतने के लिए अब मैं पूछने वाला हूँ आपसे द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो क्या आप सवाल के लिए तैयार हैं?
1: जी पाजी।
0: ये रहा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
2: सर जी प्लीज, मैं फोन ऑफ फ्रेंड यूज करूँगा और अपने डैड को कॉल करना चाहूँगा।
0: कंप्यूटर जी, इनके डैड को फोन लगाया जाए।
3: हेलो
2: पापा जी, मैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पे आ गया हूँ और सवाल ये है कि गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
3: ओ हाय रब्बा, ओ उल्लू के पट्ठे, तेनू एना भी नहीं पता, सारी दुनिया नु पता है यार, गोल्ड बैंक।
2: सर जी आंसर गोल्ड बैंक लॉक किया जाए।
0: और ये बिल्कुल सही जवाब, गोल्ड बैंक इज द राइट आंसर। सबको पता है गोल्ड खरीदने और बेचने की सबसे सही जगह है गोल्ड बैंक। हाय
4: Visit the Gold Bank, 215 The Broadway, Southall, 0203 500 1111, goldbank.co.uk.
5: And now, the weather.
6: Outside, gloomy skies, a persistent drizzle, and a chilly wind blowing from the west, north, east, and south.
7: But inside, temperatures of toasty warm with a high chance of plush rugs, soft lighting, and snuggly throws. Come home to cozy. Enjoy 20% off selected textiles, lighting, and more. In-store only at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday. T&Cs and exclusions apply. Find out more at ikea.co.uk.
8: The first time you saw a red squirrel, the beautiful colours of autumn, and blackberry-stained fingers, a wrong step in a stream, muddy trousers, and having to take them off before you get in the car. Thanks to the support of our members, the Woodland Trust protects the woods where these stories begin. Help save moments like these by joining the Woodland Trust today from just £4 a month. Visit woodlandtrust.org.uk/join.
9: This will be my very last season of Coffee with Karan. So join me and have that one last cup of coffee with me.
10: Join Karan Johar and his esteemed guests for the final season of Coffee with Karan, streaming now exclusively on Jio Hotstar. Download and subscribe now.
11: Drive on Sunrise with Pepe's Piri Piri. Order at Pepe's this month and you could win tech vouchers on the spot. Plus, you're automatically entered into a grand prize game bundle draw. Flame grill flavor with a side of winning. Pepe's. T's and C's apply. Sunrise
12: Radio. Happy birthday to rapper, record producer and Desi hip-hop pioneer, Bohemia. And for those celebrating their birthday today, let's celebrate together with delicious mithai from Ambala Sweets.
13: Birthday greetings from Ambala Sweets. Imagine winning 6 kilos of Ambala's delicious mithai this Diwali. To celebrate, Ambala is giving 5 lucky customers 12 boxes of our famous mithai each. Simply spend £25 or more online at ambala.co.uk by 20th October for your chance to win. Perfect for sharing after the win. Celebrate Diwali with Ambala. Terms and conditions apply.

0: Discover affordable Dubai with Southall Travel. Enjoy 3 nights from just £629 per person, flying direct with Emirates. Perfect for families, couples or shopping trips. Hurry, limited availability and travel by December 10th. Call 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk. Southall Travel. Pay less, enjoy more. Southall Travel. Atoll protected. London, get ready. Raga Events presents Bare Mia Chote Mia live in concert, powered by India Wala Paneer. Experience the legendary Bollywood icon Udit Narayan performing live alongside the dynamic Aditya Narayan. One epic night of legendary hits, electric energy and pure Bollywood magic. Sunday, December 20th, 2026 at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets are selling fast. Grab yours now at Ticketmaster, AXS or visit raga.events.
1: Looking to get back into study? Choose Global Banking School. We deliver undergraduate and postgraduate courses in accounting, business, construction, computing, project management, healthcare, tourism and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face-to-face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester, and Leeds. Contact Global Banking School on 0208092 9440 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.
2: Quality Food Diwali Dhamaka 2026 brings you unmissable opportunities to shop, save and win amazing prizes, including a brand new car, 2 luxury holidays for couples, 5 1-gram gold coins and plenty more. Scan the QR code in store to enter the draw and enjoy festive offers across all Quality Food stores. T's and C's apply. Discover Taza Malai Paneer, soft, white and irresistibly creamy. Made with the finest ingredients, our paneer has a rich Malai texture, perfect for every dish. High in protein and available in all sizes. Taza Paneer brings freshness and flavor to your kitchen. Stay fresh, stay Taza, this Diwali at Quality Foods.
3: Dosto, aap sabhi ka swagat hai fir se ek baar Khelo aur Jeeto program ke dusre episode mein. खेल को जीतने के लिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ पहला सवाल, जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर गोल बेचने की सबसे सही जगह कौन सी है?
4: मैं फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल कर सकती हूँ?
3: जी बिल्कुल
5: शबनम, इसका जवाब गोल्ड बैंक है।
4: हाँ, मुझे राहुल का जवाब ठीक लगता है, गोल्ड बैंक
3: बिल्कुल सही जवाब। अब आखिरी सवाल, गोल खरीदने और बेचने दोनों के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है?
4: सर मुझे जवाब ठीक से पता नहीं है, मैं ऑडियंस से पूछ सकती हूँ?
3: बिल्कुल आप ऑडियंस पोल ले सकती है।
6: गोल्ड बैंक।
4: मैं ऑडियंस के साथ हूँ, गोल्ड बैंक।
3: यहाँ देखिए 99.9% लोगों ने कहा है गोल्ड बैंक है सबसे सही जगह। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं।
7: विजिट द गोल्ड बैंक, 215 द ब्रॉडवे साउथॉल, 0203 500 1111, goldbank.co.uk। लाइफ

है, खाली पीली ऐसे लफड़ा करे है, प्यार कम ज्यादा झगड़ा करे है, ऐसे तड़पाए क्यों, ईगो तो दिखाए क्यों, मछले है जैसे कुनकन की मछली।

0: Discover affordable Dubai with Southall Travel. Enjoy three nights from just £629 per person, flying direct with Emirates. Perfect for families, couples or shopping trips. Hurry, limited availability and travel by December 10th. Call 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk. Southall Travel. Pay less, enjoy more. Southall Travel. Atoll protected.
1: Mira's Bar and Pure Vegetarian Restaurant for family and friends in that perfect ambience. Offering mouth-watering vegetarian dishes, open 6 days, now serving unlimited breakfast every Sunday from 9 to 11:30am. Eat as much as you like from $12.99 and kids under 12, $5.99. Mira's Bar and Restaurant, 36 Queensbury Station Parade, Edgware. For bookings, visit mirarestaurant.com. Love all, serve all.
2: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या लेट्स सेव water.com पर जाएं।
3: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union, share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply.
4: This is Sunrise, the UK's biggest.
5: What chumka? What chumka?
4: What chumka? Asia.

0: Newer Pepe's are the Pepe's Melts. Flame grilled flavor, toasted to order. Our chicken melts, flame grilled chicken, melted cheese, flavor packed toppings, all stuffed into toasted focaccia. Prefer veggie? Our paneer melts bring the same flame grilled magic. No compromise on taste. And you choose your filling. Smoky barbecue cheese melts or fresh tomato salsa cheese melts. Either way, it's proper flavor. Pepe-licious. Chicken or paneer, barbecue or salsa, your melt your way. New melts only at Pepe's.
1: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे।
2: रिमिटली से अपने प्रियजनों को पैसे भेजें और दूर रहकर भी उनकी दिवाली को खुशियों से रोशन करें। चाहे त्योहार की तैयारी में मदद करना हो, जश्न का मजा दोगुना करना हो या थोड़े ज्यादा पैसे भेजने हो, उनकी दिवाली का हिस्सा बने चाहे आप जहां कहीं भी हो। लाखों लोगों का भरोसेमंद रिमिटली ऐप पैसे भेजने का एक तेज, किफायती और सुरक्षित तरीका है, ताकि आप उनके साथ खुशियां बांट सकें। रिमिटली ऐप डाउनलोड करें और अपने पहले मनी ट्रांसफर पर खास ऑफर पाएं। Remitly UK Limited को FCA द्वारा विनियमित और अधिकृत किया जाता है।
3: The first time you saw a red squirrel, the beautiful colours of autumn and blackberry stained fingers, a wrong step in a stream, muddy trousers and having to take them off before you get in the car. Thanks to the support of our members, the Woodland Trust protects the woods where these stories begin. Help save moments like these by joining the Woodland Trust today from just £4 a month. Visit woodlandtrust.org.uk/join.